0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: जनता केबल 5 दशक देखी।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: दाजु भारी गाउँकी चमेली नाम गरेकी केटी त कति राम्री मिर्का नै नि आँखा गाउँभरि उसकै चर्चा। उसलाई बिहे गर्न पाउने केटो त साह्रै भाग्यमानी। दाजु सोचौँ है सोचौँ।

खै किन लायो हराई जाने माया, कसलाई लायो खै अधुरो गराई जाने माया, अहो पराई जाने माया, अहो पराई जाने माया।

0: 081-535-7617 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
1: दाई धेरै समयदेखि महिनावारी गडबडी सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुःख पाएकी छु। कहाँ जाँदा राम्रो होला?
2: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ। पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ। त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ। अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ।
1: हो र, त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाई?
2: सुन, त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन, सेतो पानी, महिनावारी गडबडी, गर्भवती जाँच, पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स, हर्निया, एपेन्डिक्स, थाइराइड, पित्त थैली, गाँठागुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि।
1: हजुर, मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निसाले सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा। सम्पर्क नम्बर 97-6-39-11-786 र 98-2-24-92-377।
3: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य।
4: खुसीके खबर, खुसीके खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी।
5: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार, परसुटी व स्त्री रोग के सक्कू उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कू उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आयल बा।
4: ओस्तक, सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो सम्बन्धी सक्कू उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे ओ और सक्कू सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर ओ थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
5: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कू डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081-536-465, 98-2-39-80-665 व 98-482-80-465।

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: बर्जर पेन्स
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 9850303479 र 9840821380
4: ओहो आज डाइह नै मजा लागत हो मजासे दवाई करेना कहटु
5: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न पश्चिम नेपालके अनुभवी ओ उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत
4: ए बाट ठिक कैलो साच्ची कि अस्पतालमा काका सुविधा मिलत त
5: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाउ उपचार गर्न सँगे एनआईसीयु पीआईसीयु आईसीयु हाईटेक अपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पाजाइत छोट बच्चा हो भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत
4: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
5: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081535717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
4: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्रमा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइत ओत्रकेल कहाँ हो वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ती रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुन्ना कान दम्मा हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुईट वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाएत जस्तेक बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसिन मेसिन फे वहाँ मिलत
4: ए ओसिड हो कल से बुडू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुन से कही ट
5: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9980206697 9850823697 वो 9804 83697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्रमा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ती रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुन्ना कान दम्मा हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगैना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मेसिन फे वहाँ मिलात
1: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9984206997 9985236697 वो 9804086697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
3: खुशी के खबर हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है
4: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो एक साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जात है जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज
3: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज
4: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
3: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
4: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
3: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज
4: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज
3: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है
4: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हरेक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है
3: नोट ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथन जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है
4: संपर्क नंबर 081536465 9249806665 और 9842808465

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घुमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्रामवा सुने मारे रेडियो वाली ये बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आए थे किसी सारे एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किराऊ मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार। कार्यक्रम चना जोर गरम सुने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो सुरताई प्यारा से कार्यक्रम लेकर आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान डाल पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी प्रादिक मा जो सदा साथी रहा आज भी हमरे चंदा जी। हाँ तो साथी आज सोमवार है जिमा आप लोगन का फिल्मी दुनिया के बारे में रहे जैसे सिंगर गायकार फिल्म के सब नाम बताओ परी और सही नाम बता ले साथी का पुरस्कार टी शर्ट देवे। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए 0981415122 के लिए नेपाल के साथी आओ जी, नेपाल से बाहर के साथी 0079701415122 के लाइन में हमरे जो साथी आओ जाई। ये कार्यक्रम आपके 1 बजे से 3 बजे तक रही कार्यक्रम, लंबा कार्यक्रम है साथी, तो इसे आप लोग एकदम तैयार रहा जाए। कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के प्यारा कार्यक्रम है जिमा आपका फ़ोन करे परी, तो इसे पहला नंबर में गाना है, हाँ गाना है रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, कौन फिल्म है कौन गायक लोग गाना का गायन है। और इसे दो नंबर में गाना है आप लोग एकदम ध्यान से सुना जी, लेके पहला प्यार आया आँखों में घुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, कौन फिल्म है कौन सिंगर लोग ये गाना का गायन है। साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जी आप के प्रिय रेडियो कृष्ण सार एफ एम नेपालगंज जो 12 बिलासपुर से ही कार्यक्रम चला थे कृष्ण सार एफ एम से। तो साथी आंसर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो गीत के क्वेश्चन है का आप लोग फिल्म गायककार और सब पूरा एकदम सही बताओ जी कि कौन गायक लोग गाना गायन है कौन फिल्म के गाना हो, एकदम सही उत्तर दिया जी। तो आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए 0981415122 के लाइन में और शुरुआत में सुना जाए प्यारा से आप लोग गाना। हाँ पहले विज्ञापन है उसके बाद में सुना जी, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेपिकोल से।
1: दाई धेरै समयदेखि महिनावारी गडबडी सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुःख पाएकी छु, कहाँ जाँदा राम्रो होला?
2: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ, पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ, त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ। अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ।
1: हो र, त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाई?
2: सुन, त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन, सेतो पानी, महिनावारी गडबडी, गर्भवती जाँच, पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स, हर्निया, एपेन्डिक्स, थाइराइड, पित्त थैली, गाँठागुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि।
1: हजुर, मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा, सम्पर्क नम्बर 97639711786 र 98224392377।
3: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य।
4: समय बदलियो, पुस्ता फेरियो, तर साथ साथ उस्तै छ।

0: हाँ तो सुरताई जो प्यारा से गाना सुनागा, खैर गाना बहुत अच्छा रहा है, तो इसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लेन में आओ जे नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 009-70-81-415-122 के लेन, जो हमारे देश विदेश के पड़ोस भारत के तमाम साथी लोग सुनत हैं, तो आप लोग आवाजी। तो आज के गायककार फिल्म के नाम सब बताए पड़ी कि कौन फिल्म के कौन गाना होए, तो पहला गाना है रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, कौन फिल्म है, कौन गायक लोग ये गाना का गायन है। ऐसे दो नंबर में है गाना लेके पहला पहला प्यार आया आँखों में घुमार जादू नगरी से आया कौन जादूगर, कौन फिल्म है, कौन गायक लोग गाना का गायन है। दोनों का सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी, कहाँ से दिया जी, आप लोग जाना जाते हैं, आप लोगन के माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 में है, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी, जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब कपड़ा सेत है, वहाँ से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। तो साथ ही ऐसे आप लोग नंबर में जुड़े रहा जाए, कैसे कार्यक्रम बस आप लोगन के है, ये कार्यक्रम जो आप लोगन के 1 बजे से 3 बजे तक रही कार्यक्रम, जिमा आप लोग अपने मन पसंद के गाना भी फोन के संपर्क में आई के सुन सका जाते है और मैसेज भी पठाई सका जाते है। तो कोई साथी फोन लाइन में है, पहले उनका स्वागत कर ली, देखी को कहाँ से है, नमस्कार
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपके नाम?
1: मोतीलाल यादव, बाकी गांव से बोली थे।
0: मोतीलाल जी?
1: हाँ।
0: और बढ़िया?
1: हाँ बढ़िया है, एकदम बढ़िया।
0: बढ़िया हो चाहिए तो कार्यक्रम शुरू से सुना था।
1: हाँ सुने हम।
0: हाँ तो गायक कार फिल्म के नाम बताओ।
1: एक नंबर के हो, नया दौर फिल्म के नाम हो।
0: हाँ
1: शमशाद बेगम और आशा भोसले और साहिल रिजवान की जना के आवाज है, और दूसरा जो है आशा भोसले और मोहम्मद रफी सी आई डी फिल्म हो।
0: हाँ?
1: आशा भोसले और मोहम्मद रफी, दूसरा वाला दो नंबर के नहीं, सीआईडी फिल्म
0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी।
1: हाँ, शुरू के शमशाद बेगम, आशा भोसले।

0: और सुनो ना मियाँ जी,
1: हाँ
0: अरे तो गाना नहीं बजाए थे, गाना
1: कौन गाना?
0: लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती, मानो हमारा एहसान जो लड़के ने हाँ कर दी।
1: गाना के बोल का है?
0: वही लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती,
1: लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती।
0: हाँ हाँ
1: अच्छा ठीक है, कोशिश करी थे ना।
0: ठीक ठीक लो।
1: हाँ तो पहले नंबर में कहा बताओगा तुम?
0: नया दौर फिल्म के नाम हो नया दौर।
1: हाँ
0: आशा भोसले और जो है शमशाद बेगम।
1: अच्छा ठीक है, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ साथी रहे हमरे मोते है जाएगी गाना मियाँ जी का सुना दिया जी, तो ठीक है कोशिश करबे, अगर गाना मिल गया तो हम जरूर सुना देवे। तो हम है जो ये हफ्ता में ये सोमवार के आवत है 1 बजे से 3 बजे तक, जिमा आप लोगन का फोन करे परी 0815-122 के लाइन में। ऐसे मैसेज भी हमरे हाथ में तमाम मैसेज भी आ चुका है, मैसेज भेजे वाले हैं जेसपुर वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर चौराहा से मैसेज भेजी ने हमारे लाल सोनी जी ने हो कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, कार्यक्रम के प्रशंसा करी ने कहने आपसी बजे वाला कोई भी गाना सुना दिया जी, हम का अमर लाल सोनी के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाव चाहित है। ऐसे जानकी गांव पालिका 3 बंजारे गांव से जो मैसेज भेजी ने गोमती प्रसाद वर्मा जी, इन्हों कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, इन्हों कहने कोई प्यारा से गाना सुनाए दिया जी, आया तो हमका तनी कव्वाली सुनाए दिया जी। कुली फिल्म के मुबारक हो तू सबका, हज का महीना नथी मेरी किस्मत ये देख मदीना। ठीक है हम ये कव्वाली आपका जरूर सुनेबे। कहने हमका गोमती प्रसाद वर्मा के चिन्हे जाने वाले घर परिवार का, यार दोस्त साथी संगी का, और जहाँ तक आपके रेडियो बाजा सुनत है तहाँ तक सब साथी लोगन का ये गाना हम सुना चाहिए थे, धन्यवाद है आपका। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजे वाले हैं जानकी गांव पालिका 3 जो बकोटिया से मैसेज भेजी ने जोला प्रसाद सोनकर जी, इन्हों कहने की मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, इन्हों कहने कोई प्यारा से गाना सुनाए दिया जी, अपने घर परिवार का, साथी भाई का, यार दोस्त का, सबका सुनाओ चाहिए थे। ऐसे दूसर मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले हैं लाल मोहम्मद ठाकुर जो ये जनता हाई स्कूल जो ये बाके से जो खजुरा गांव पालिका से, इन्हों कहने कि कोई प्यारा से गाना सुनाए दिया जी, हमका लाल मोहम्मद ठाकुर के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहिए थे। ऐसे जानकी गांव पालिका 3 बंजारेन गांव से जो मैसेज भेजी है पुजारी वर्मा जो टेंट हाउस लाइट वाले जहां सब मेरे के टेंट वगैरह जो आपके काम में यहाँ यानी कोई शुभ कारमा बांधत हैं वहाँ से, और सब मेरे के रेडियो वगैरह टेलीविज़न पंखा वगैरह जब बनाओ थे वहाँ से पुजारी जी मैसेज भेजी ने कहने हमका गाना सुना दिया जी, छमक छल्लो जरा धीरे चलो अजय फिल्म के गाना है, तो छमक छल्लो जरा धीरे चलो वरना जाओगी फसल लचक जाएगी पतली कमर। ठीक है कहने हमका पुजारी वर्मा कहके चिन्हे जाने वाले सब लोगन का, विशेष कहके हजरत अली शेख का सुनावा चाहित है, धन्यवाद है पुजारी जी। ऐसे आपके मैसेज जारी रही और हमरे तमाम साथी लोग, तो साथी आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए 0815-122 के लाइन में आ जाए, लगी पे लगाओ तकदीर का आजमाओ, जीता जाए प्रेज और ज्योति टेलर से ले जाओ। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज आएगा है मैसेज, हाँ कोई साथी हमरे फोन लाइन में आए गए हैं, पहले उनका स्वागत के लिए नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, अरे मुंह खोलो कुछ बोलो। नमस्कार, हाँ साथी खाली फोन घंटी बाज के रहेगा, आवाज़ कुछ नया आवाज साथी फिर से फोन लगावा जाई। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजनी है राम कुमार मोबाइल सेंटर जो ही बागेश्वरी टोल बागेश्वरी मंदिर जाए वाले रास्ता से, कोई साथी आए गए हैं उनका स्वागत के लिए नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, हाँ साथी नमस्कार नमस्कार करे थे, आवाज़ नया होते साथी, आपके मोबाइल में कोई गड़बड़ी है या तो

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
0: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि घर रंगाउ खुशी बनाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
0: बर्जर पेंस
2: बीर डेंटल
3: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
4: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
4: फोन नम्बर 081-5323-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
3: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
5: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-5313-366 र 98-0-85-49-451।
6: ओहो आज डाइह नै मजा लागठो मजासे दवाई करेना कहटु।
7: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन, पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफारकैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
6: ए बात त ठिक कैलो, साच्ची कि अस्पतालमा काका सुविधा मिलत त?
7: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाउ उपचार करना संगे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कै जाइत।
6: ए ओसिनो कला से उहै जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
7: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-5357-17। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
8: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
9: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगन के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत है। और साथन लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत है। साथन कान कम सुने वाले बीमारी लोगन के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
8: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
9: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697 98580-2697 और 98014-83697।
8: बहिरोपन निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: हाँ तो श्रोताई, छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415 से बाईस के लाइन में आ जाए, कैसे कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान का खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलता है। आप के प्रिय रेडियो किसी सारे पेम 94 MHz से कोई साथी है देखी को कहाँ से। नमस्कार।
1: नमस्कार, सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम भद्रा जी।
1: हाजूर।
0: और बढ़िया है?
1: मजे में।
0: बस बढ़िया रहा ना।
1: हाँ।
0: गायकार फिल्म के नाम बताओ।
1: हाँ?
0: जो सिंगर के ओ फिल्म के गाना के सब नाम बताओ।
1: नहीं सुने मियाँ जी।
0: नहीं सुन।
1: कुछ कार्यक्रम त्योहार कार्यक्रम फोन लगा हुआ है, चार पांच बार कट गया रहा, नाम कार्यक्रम नहीं सुना है आपके।
0: तुम्हें लगाया है चार पांच बार फोन?
1: हाँ तो कट गया रहा।
0: तो इधर से हम हेलो हेलो तो करीता है,
1: तो हमारा आवाज नहीं सुना थे, बोलत रहे।
0: अच्छा ठीक है, तो गाना सुना जाए ना।
1: हाँ गाना नहीं
0: नहीं
1: ऐसा करो,
0: क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन।
1: हाँ क्या है क्वेश्चन?
0: पहला नंबर में है रेशमी सलवार कुर्ता जाली का कौन फिल्म हुए, कौन गायक लोग गाना गाए नहीं। इसे दूसरे नंबर में गाना है लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया कोई जादूगर, दोनों का सही बताओ जाए, कौन फिल्म हुए कौन सिंगर लोग गाना का गाए
1: नहीं। ये नहीं जाते थे मियां जी, पहले पहले बोलत रहे तो हाँ बता ली, अभी नहीं जाने थे।
0: अच्छा ठीक है, तो नमस्कार।
1: नहीं गाना हुआ बजा दो एक शॉट।
0: हाँ गाना बजेबे, कौन गाना?
1: ओ कबूतर जा जा वाला।
0: अच्छा मैंने प्यार किया फिल्म के है ना।
1: जी जी जी।
0: हाँ कबूतर जा जा की भद्रा जी जा जा जा,
1: जो भी बोलो।
0: हाँ ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: हाँ साथी भद्रा सिंह सिरपाली रहा सी गाँव जो खजुरा गाँव पालिका एक से, मैंने प्यार किया फिल्म के गाना के फरमाइश करी ने पहली प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया कबूतर जा जा कोई साथी। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: हाँ आपके नाम?
2: बस गोमती प्रसाद वर्मा बंजारे गांव जानकी 3 से मियाँ जी।
0: और गोमती जी अच्छा है?
2: हाँ बढ़िया है।
0: और हमरे बंजारे गांव बासिंदा सब ठीक है?
2: सब ठीक है मियाँ जी।
0: आपके मैसेज तो आपके मैसेज भी आवा रहा है, पढ़ा रहा है, सुनो कि नहीं?
2: नहीं सुना है, हमरे इतनी झगड़ा हो रहा है, मोबाइल ही नहीं चलाया।
0: गाना आपके तो वो कुली फिल्म के कव्वाली है मदीने।
2: नहीं कव्वाली नहीं।
0: हाँ
2: वही कीर्तन सुना दिया जाए कृष्ण जन्माष्टमी के।
0: अच्छा बाजे आनंद बधैया अवध माँ वो राम अजल में।
2: हाँ कोई भी
0: ठीक है ठीक है। हाँ ये बहुत बढ़िया बढ़िया, तो कतुरे ओहर तो नहीं आएगा।
2: अरे हमरे तो मंदिर है कृष्ण जन्माष्टमी भवा है, जन्म भवा है भगवान।
0: अच्छा तब तो प्रसाद और साध हमारे हिस्सा हो करी है नहीं।
2: हाँ बिल्कुल
0: ठीक है आप
2: समझा के।
0: ठीक है आप कहागा बजानो पेट भरगा हमरे गोमती जी ना। हाँ तो जन्माष्टमी के हम तो कहते वो वाला बहुत अच्छा है बाजे आनंद बजे, कहे से उनके छठी सोहर के टेम है।
2: हाँ हाँ वही बजा दियो।
0: जन्माष्टमी तो उनके जन्म सुकवे के होएगा।
2: हाँ हाँ सोहर वही तो कहते बधाई बजाए दो।
0: अच्छा तो सोहर सुनई हो की काकी का?
2: अरे सबसे पहले आपका और कृष्ण सारे एफएम सारे स्टाफ परिवार का सबका सुनेबे, जहाँ ले आवाज जात है जहाँ ले जानत पहचानत है तहाँ ले सब कोई सुनी मियाँ जी।
0: आओ सवेरे वो डबल तनहा से रहे कार आ रहा है गंगाराम
2: रामदास
0: रामदास। हाँ उनका भी सुनाई दो पुजारी का ना।
2: हाँ हाँ
0: हाँ पुजारी टेंट पुजारी टेंट वाले।
2: हाँ हाँ
0: उन्हों हाँ तो लियो ठीक है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: हाँ साथी मैसेज भी भेजी ना हमरे गोमती प्रसाद वर्मा जी, हमरे रेडियो के बहुत पुराने नेमी श्रोता हैं और फिर फ़ोन भी करें, इनका रेडियो से लगाव बहुत है, मोहब्बत है प्यार है, तो कहने जन्माष्टमी के कोई भी चीज सुनाए दिया जी ठीक है चंदा जी, बाजे आनंद आनंद बधैया अवधमा ओ रामा जन में बहुत अच्छा है ना सोहर, एका बजाए दिया जाई हमरे गोमती जी के दिल ना तूरा जी, उस दिन उनके कव्वाली रहेगा रहा तो शिकायत भी करी ना है कहना कि मियाँ जी हमार कव्वाली उनके कव्वाली भी बाजे के यहाँ चाहिए। तो साथ ही इससे आप लोग नंबर में आ जाए सुनने के 8415 122 के लाइन में आ जाए, कैसे कहते हैं कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत करियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप ही के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 मेगाहर्ट से। हाँ तो श्रोता ये रेडियो का जो सुना जाता है तो ऑडियो वीडियो में सब सुना देखा जाए, माँ शेयर लाइक कमेंट जरूर करते रह जी। कैसे नेपाल के जो बांके जिला नेपालगंज 12 से कार्यक्रम प्रसार होते हैं किसी सारे FM से। तो साथी आप लोगों का अगर मोहब्बत प्यार है तो आप लोग 009707081415 में फ़ोन किया जी, पड़ोस भारत देश विदेश के श्रोता नेपाल के साथी तो सुना है 8415 122 के लाइन में आओ जी, उनसे कोट वगैरह से नहीं मतलब है मगर भारत के साथी 009707 जरूर लगा लिया जाए तब 81415 करा जी आपके फ़ोन बराबर है। तो इससे मैसेज भेजे हैं, मैसेज भेजे वाले साथी हैं लिखे, सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है मस्तराम पाठक जो ये खजुरा रोड धम्भोजी पान की दुकान से, कहने मियाँ जी ढेर दिन हो गया है मुलाकात भी नहीं भा है और भेंट भी नहीं किया जाता है और हमका कोई भी कन्हैया अष्टमी के सोहर या कोई भजन या कोई चीज़ सुना दिया जिन्हों के फरमाइश है, कहने अपसिक बजे वाला जो है तो संगीता गीता का राजकुमार का गोपाल का तमाम साथी लोगन का सुनावा चाहिए घर परिवार का यार दोस्त का। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजे वाले हैं छंगा पान वाले जो ही, जो जा ये राम ये दम्बोजी जो ही मंदिर है शिव मंदिर है, शिव मंदिर के बगल में से जो ही मैसेज भेजी ने छंगा जी इन्हों कहने कोई प्यारा से कन्हैया अष्टमी के सुनाई दिया जी, ठीक है हम आपका ज़रूर सुनेबे। ऐसे जो दूसर मैसेज है, मैसेज भेजे वाले हैं विजय कुमार वर्मा जो ही शिवानी गिरिल उद्योग जानकी गांव पालिका चार बाबा कुट्टी से मैसेज भेजी ने इन्हों कहने कोई प्यारा से कन्हैया अष्टमी के वो सुनाए दिया जी। तो साथी आप लोग इनके मैसेज फ़ोन करते रहा जी और आपके प्यारा कार्यक्रम है माँ आप लोगन के सकबर तो हम आपके वो करब, मगर पहला नंबर माँ गाना है गाना के आप लोग सुन लिया जाए। हाँ रेशमी सलवार कुर्ता जाली का कौन फिल्म हो कौन गायक लोग गाना गए नहीं से, दूसरे नंबर माँ है लेके पहला पहला प्यार लेके आंखों में गुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, कौन फिल्म हो कौन गायक लोग ही गाना का गए नहीं गाए, सही उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी ज्योति टेलर से। तो अब हम चले थे पहले 2 बजे के टेम चेक के बाद में यहाँ आप लोग सुना जी प्यारा से गाना छम्मक छल्लो जरा धीरे चलो, उसके बाद में आपका लाइन लाइन से गाना जरूर सुने मिली

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाते है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
2: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9809825 4037।
1: भैया बहुत दिन से महीनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं।

0: यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेयर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ तमाम मेयर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है, जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081536465 98249806665 और 98482804665।

0: हाँ तो सुरताई प्यारा से सोहर जो सुनागा जन्माष्टमी कन्हैया जी के, तो ऐसे साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के प्यारा कार्यक्रम है जिमा आप लोगन का फोन करे फ्री। हाँ तो कोई साथी मेरे फोन लाइन में आया रहा है मगर चले गए, आवे जाए तो ऐसे वहीं जाते आए गए और तो सुना कैसी 4-15-22 के लाइन में जुड़ा जाए साथी कैसे कार्यक्रम, बस आप लोगन के प्यारा कार्यक्रम है। तो इसे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति ठेले जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 माँ है, जहाँ समीर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार से थे, वहाँ से आपका पुरस्कार दिया जी। पहला नंबर में गाना है रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, कौन फिल्म हुई कौन गायक लोग गाई नहीं से। दूसरे नंबर में गाना है लेके पहला पहला प्यार आया आँखों में घुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। देखी को साथी हमरे फोन लाइन में है, पहले उनका स्वागत कर ली। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, आपके नाम?
1: नेपाल राजा।
0: नेपाल राजा, और नेपाल राजा और बताओ?
1: बढ़िया
0: है, कहते राजा हो महाराजा हलवा खाओ ताजा। अरे आज यहाँ भूखन मारे पेट करो थे तो नहीं गाते पकौड़ी का मुँह में पानी आएगा। तो अता मोहब्बत है तो लेके चले आओ तो जानी।
1: आप इतना?
0: हाँ आप इसी में ले हो तो ऐसा है, दू जने हैं तो चंदो जी के हो जी कुछ मुझूठ।
1: अच्छा तो ठीक है लियो, हम आइए ऑफिस को।
0: कै बजे भरे में आई हो?
1: अब हम 3-3:30 बजे आएगी।
0: 3:30 बजे, 3:30 बजे राजा नेपाल जरूर मिलना किसने सारी फिल्म में। तो हमका फोन कहके तब आयो ना?
1: तो नंबर ना आयो उधर से बस मैं कॉल मार दी हो।
0: और नंबर का की हो? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए दुनिया के यत्ता हो मसोरा। हाय का हो क्वेश्चन के उत्तर दे, जो गायककार फिल्म जो गायककार लोग उनके फिल्म के नाम बताओ, कौन फिल्म कौन गायक लोग गाना गई नहीं अन्ना जान पी हो। ठीक है तो नमस्कार। अब गाना फरमाइश के टाइम नहीं है, गाना बहुत हो गए हैं
1: मोबाइल में तो बोले लग मोबाइल में सुनाई है कहा था फाइल झमकार के सरीजे वाला गाना तो बेहतरीन वाला सुनाई दियो।
0: कौन गाना
1: मोबाइल में सुनाया तो अब यही तो सब गाड़ी तो उधर से नीचे तो
0: कौन गाना झमकार के?
1: हाँ कहा
0: रेशमी सलवार कुर्ता जाली का सुनाई दियो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हमरे रहे सागर बहलिया उर्फ राजा जी। अब हम चली थे पहले व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद हाँ कोई साथी है उनका पहले स्वागत कर ली। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार
2: नमस्कार।
0: हाँ को
2: भोला गौड़ी से।
0: भोला गौड़ी से का नाव?
2: अमर।
0: हाय
2: अमर।
0: अमर लाल। और हो अमर जी आज कहाँ आए गए?
2: सब ठीक है
0: अमर लाल, बहुत दिन में आयो।
2: बहुत दिन में आया।
0: माया मार दी हो तब का?
2: माया मैंने मरा तो बंद करी।
0: अरे तो कहा था वही वाली हाल जरत भरत का है, का भुआ खाए से कब्बो ना कब्बो फोन लगाए तो का भुआ लगा लगाए से
2: याद आ जात है।
0: हाय
2: याद
0: लियो धन्यवाद, भला अब तो याद कर लियो, बहुत शुक्रिया आपका। मालिक खूब अमर राखे, अमर जैसे नाम है तैसे अमर रहो। तो अमर लाल जी गायककार फिल्म के नाम बतावा जाए।
2: फिल्म के विषय में हमारा आवाज़ जात कुछ नहीं है।
0: आवाज़ जात कुछ नहीं है। टठिया भर खाए खाली जानत हो आए
2: टठिया भर मिल जाए एक बार।
0: हमार नंबर तो आपके थिर है कि नहीं है?
2: नहीं आपके नंबर हम इसके पास नहीं
0: है। नहीं है तो अपन नंबर बताओ।
2: हमार नंबर अब हम हूँ नहीं जा रही
0: ये तब का ठीक है। अब नंबर बताई थी तो हम आप बहम अपन नंबर पठाई दी ठीक है तब। नमस्कार
2: नमस्कार।
0: हाँ साथी भोला गौड़ी से रहा है अमर लाल जी। खैर हमरे बहुत पुरान सुरता तो साथी अब हम चली थे पहले ब्रिक के तरफ, ब्रिक के बाद में सुना जी प्यारा से गाना रेशमी सलवार कुर्ता जाली का।
3: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अंतिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्। तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री एफई 550 ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
4: वाओ प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
5: ल है बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC छ नि।
4: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
5: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित AC कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
4: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
6: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
4: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10-12 औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 580 36 577, 98 580 98 1995 र 98 580 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC सफल भविष्यको बलियो आधार।
7: नमस्ते दाइ।
8: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिनपछि देख्यौ त भाइ।
7: विदेश जान आँटेको दाइ, प्रोसेस गर्दै थिए। अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
8: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त। अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
9: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
10: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीका साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
11: हाम्रा विशेषताहरू:
10: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
11: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थाइराइड रोग

0: हाँ तो सुरताई प्यारा से गाना सुनागा लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में घुमार, जादू नगरी से आया कोई जादूगर। हाँ साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, कहे से कार्यक्रम के जो ही चलत है आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर आप के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 मेगा हर से। तो ऐसे मैसेज भेजे वाले रहें साथी लिखना है, मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। ही नान बाबू पहुना पान भंडार जो ही खजुरा बाजार से कहने कि हमका भी कोई प्यारा से गीत सुनाए दिया जी। तो साथी गीत तो बहुत हैं कहने हमका हमरे नान बाबू के नाम से गाना सुनाए दिया जी। हाँ घर परिवार का सुनाओ चाहिए थे, हमका नान बाबू कह के चीने जाने वाले सब लोगन का सुनाओ चाहिए थे। ऐसे मुबारक खां जो रजनवा से मैसेज भेजी नहीं लिखी ने, सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है ये कहने कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके कार्यक्रम के जितना भी तारीफ़ किया जाए उतने कम है। मियाँ जी आपके बोले के शैली बहुत अच्छा है और आपके अंदाज बहुत निराला है। तो ये कहने कि हाँ मुबारक जी जो आजकल सऊदी माँ है मगर इनके नेपाल के ठिकाना जो ये खजुरा गांव पालिका रजनवा 5 माँ है। हाँ इनके घर परिवार माँ सबका समझे वाले हैं, जैसे इनके अब्बा महमूद खां हैं, ऐसे तमाम साथी लोग हैं, मोहम्मद हाशिम खां हैं, मोहम्मद जिब्रील खां हैं, इंताज खां हैं और कहने कि मुश्ताक खां हैं, हसनैन खां हैं, हसनैन खां हैं और कहने कि हारून खां हैं, भगोले चचा हैं, भगोले खां हैं और तमाम साथी लोगन का अभिलाष खां हैं, मुलीम खां हैं, कलीम खां हैं, मुनीर खां हैं, यानी समस्त खां परिवार का सुनावा चाहिए। धन्यवाद है आपका मुबारक जी और कहने हमका मुबारक के नाम से चीने जाना ले साथी भैदू हैं, लाल खां हैं, घूमती बनिया हैं, सुरेश सोनी हैं और शहादतपुरवा के मियाँ जी हैं। हाँ ठीक है, अगर मियाँ जी सुनत हुए हैं तो ज़रूर सुनिए लाल खां। ओ मुबारक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो सऊदी से मैसेज भेजागा। तो ये कहने कि आपके कार्यक्रम के हम नेमी सुरतान मियाँ जी चलती गाड़ी में भी हम आपके कार्यक्रम पूरा सुनित है और आपके नज़ारा जत्ता है सब हम मोबाइल में दिन भर सुनित है देखित है। ठीक है लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा जी मुबारक जी। तो हम चली थे फिर व्यापारी विज्ञापन तरफ के बाद में सुना जी प्यारा से गाना, गाना के बाद में हम आप फिर मिला जी।
1: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
2: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
1: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
2: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री IVF क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
3: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री IVF क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
1: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
2: धन्यवाद शुभश्री IVF, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
3: थप जानकारीका लागि शुभश्री IVF क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 98 61 14 16 99।
4: हाय के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दैछ, थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
5: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
4: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
5: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
4: कस्तो खबर?
5: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, MD इन्टरनल मेडिसिन TU, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली, यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
4: ए साँच्चै?
5: अझै सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
4: ए त्यो त झन् राम्रो
5: हो नि। डाक्टर पूनम आचार्य MBBS, MD KU, IVF स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS, MS KU, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
4: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
5: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
4: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
5: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
4: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
5: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
6: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
7: फेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल फेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू: एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580-30479 र 98480-21380।
8: ओहो, आज डाइह नै मजा लागत हो। मजा से दवाई करे ना कहटो।
9: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न। पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
8: ए बात तो ठीक कहलो, साच्ची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत त?
9: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन व लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए।
8: ए ओसिनो कला से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह।
9: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081535717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
10: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
11: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
10: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
11: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
12: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
10: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
11: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है, जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
10: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
11: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
10: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
11: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
10: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
11: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
10: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
11: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेक जानकारी भी करावा जाता है।
10: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
11: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-84-465।

0: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
1: तपाईलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
0: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
1: एउटै छाता मुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथ रोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
0: अनकल सेवाहरू,
1: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिशा, पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
2: डाक्टर भेट्ने समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 7:30 बजेदेखि 8:50 सम्म, साँझ 5:15 बजेदेखि 7 बजेसम्म, शनिबार र आइतबार बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म, साँझ 3:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म।
1: सम्पर्क फोन नम्बर 081-5-33-719, 98-4-80-22-229 र 98-605-22-229।
3: सुविसु अपर्च्युनिटी 1900 वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रस्तुत छ सुविसु अपर्च्युनिटी। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र रु 1040 र 65 भन्दा बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना रु 221। साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरू लागू हुनेछ। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। सुविसु
4: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए, वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
5: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथ गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
4: विशेष सुविधा
5: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
6: देर न कीन जाए, आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081-5-30-598।

हाँ तो श्रोताब का किया जाए कार्यक्रम के एकदम अंत महान तो अब कार्यक्रम में फोन भी ना ले पेबे कैसे फोन करे वाले साथी जितने रहें सब लोगन का बहुत बहुत धन्यवाद दी थे आज के कार्यक्रम में क्वेश्चन माँ जो बताएं सही बेकार मगर बहुत बहुत धन्यवाद है। सही उत्तर नहीं आवा है साथी अब अगले कार्यक्रम में यही सही उत्तर बताए मैंने अब हम अगले माँ दोसर रख देवे तब अगले में यहाँ हम बतेबे कि का हो का ना हो देखो मौका पर तो इका रख या दोसर तभी का बता देवे। तो आज के कार्यक्रम में यहाँ जितने साथी फोन किए इन सब लोगन का बहुत बहुत धन्यवाद है। कार्यक्रम अपने अपने जगह पर बैठ के सुनी ना आप लोगन का बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया अष्टमी के जो नो वो चलत है ढोल ओके तरफ से आप लोगन का बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद। और ये हमरे कार्यक्रम सुनने वाले जितने श्रोता हो आप लोग जहाँ भी रहा जी एकदम सुख शांति के साथ में रहा जी। अल्लाह मालिक से यही दुआ है कि हमरे नेपाल जो सुंदर देश जो नेपाल है हमरे नेपाल के जितने माँ बहने भाई बंधु हैं दुखी परेशान हैं सबका अल्लाह सबका शांति सुख दे और उनका रहम सबर दे और जितना कुछ भा है अल्लाह माफ़ किया जाए और यहीं से आप रहम किया जाए बस यही दुआ करते हैं। आज के कार्यक्रम में ये जो हमरे भद्रा सिंह सिरपाली के फरमाइश रहा है पहली प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दया कबूतर जा छोड़ते हैं हम संचालक मियाँ जी और साथिन प्रादिक में चंदा जी दोनों जने विदा ली थे खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम नमस्कार।

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेंटलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे का है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
4: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
4: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9808-25-40-37।
3: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
3: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
5: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे, दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य।

0: केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9884206697 9885236697 और 9804483697
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
2: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया
2: सुनो। हुआ औरतन के बांझपन सफेद पानी महीनावारी में गड़बड़ी गर्भवती जांच बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया अपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कह के तहदिल हुआ जाए।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 9769411786 9824923377 सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
4: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: back to back, back to back.
1: In this song on
0: Stay Tuned.
2: अपनी पत्नी का चेहरा आजकल कुछ कम देख रहे हैं, इसलिए भगवान ने मेरे चेहरे पर लाइट डाली ताकि आप मेरा चेहरा सुकून से देख सकें।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: समय बदलियो पुस्ता फेरियो तर साथ साथ उस्तै छ

0: के पसे
1: त राम्रो के
0: त भन्दा म राम्रो हो कि हैन
1: मलाई हेर्न म कति राम्रो छ
0: ल हजुरहरु नै भन्नुस् त यो राम्रो कि म राम्री

0: जनता केबल 5 दशक देखी।
1: माया बाबू टेलर के तो सब कुछ सामान हो गिल बा, अब मशीन कहाँ से नन्ना हो।
2: छी दादू फिर ठहानी हो कि का उहट हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स।
1: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन बैठे हैं बाबू?
2: उहाँ तो अनमोल उषा वो ताज ब्रांड का संग मेर मेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री वो मरमट कई जी था। एक रख संग संग मशीन संबंधी सब कु पार्ट पुर्जा वो सामान फे पाजी था। अट्रकेल कहाँ हो कुशल कारीगर हुकन से मरमट फे करा जी था।
3: एक संगे दस्या देवारी हो छठ त्योहार समय 5-30% समय ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
1: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर घरबाई टोल 2 पीपल चौतरा नेपालगंज बाके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 9841828318 और नंबर बा 9824252478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
4: यो कृष्ण सार FM
5: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्ती के तेज़।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: खुद ब खुद बन जावे डेड बॉडी, बड़े से बड़े बदमाश भी बोल देवे मने सॉरी।
1: देख मेरा नाम चले, देख मेरा काम बढ़े, पीछे देखो तो कितने लोग मुझसे जले, अब फेस टू फेस कुछ ना बोल सकते क्योंकि वो है मुझसे डरे।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी